0: अपविश्वासक भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश्य कुतु सेक, स्वामी वंश्य उतानु सेक, स्वामिनी वंश्य नवत वडिन सेक।
0: एहिन प्यानी उन्वांस्यगे मरणयात् उत्तानयात् सीपत् कर्मिन जीवनदायक फूप्यात् गैलवी मदायक कुशलाना तपय बट पुद करम ओबाह सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वचिन सल की मगन अपय बट तुति पुदम क्रिस्तुन महंस्यगे श्री सर्रेटा श्री रुधिरेटा सहभागिवन अप सम शुद्धात्मन विशेन सत्कर्णु लबन लिस अपी अवनतवा आयद सिटिम स्वामिनी मुल्लु पेतर पवत्ना उबगे सुदो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत ऐतिव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयानुकम पावकरे विश्वासे तब मिनेश्वान कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन युबगे कमत्ते टुकले सिलु शुद्धवंते इंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सिदु संकल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत साकिरीमटद ओबगे महिमय वर्णा किरीमटद ओबगे पुत्र येशुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से करेद सियलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मनन हा समगे क्वड वसन्ना वू ओब वहन्सेट सकल गौरवयात् महिमय